वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उठे खूनी रागदा ऊधम जहे जोदे उड़वारा।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंब दी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंब दी, एहसास करो।

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चंदी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चंदी सैर नू।
1: मम्मी मिशेश जी दी रचना चन्न दी सैर दे नाल ही असीं इस कामे फल दा इत्थे ही समाप्ति करने आ ते अगली कामे फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी। एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। गोदी

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चंदी सैर नू।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चंदी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ ते अगली काम्य फल तक हरमन सिंह नू दियो आग्या। हरमन सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नू आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।